गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दरनाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच पए आले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड

सो परख निरंजन हर परख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा।

को पुरख समाना। एक बात एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हो तद बिन

जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सुचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी।

पुन राक्षस का काटा सीसा सिरिय सकेत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सबहन आन बुधाई दे धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब ने वाजा अखल भवन के सिरजन हारी दास जान मुहिले हो बारी कभियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन।

सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज करदै करिय, सब बैरन को आज संगरिय।

सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मार्य है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हु जो सदा हमारे पच्चा, श्री अस तुझो करे हो रक्षा।

चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

अपना जान करो परत पारा, तुम साहे मैं की कर थारा, दास जान रह हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तुरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिदनाना, कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब ले हो सुधारो, कबियो बात दोहरा। जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कह हो जग माहि, जो ते प्रभ को त्याय है, अंत स्वर्ग को जाहि दोहरा। हर हर जन दुई एक है, विचार कछ नाहि, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखै समाहि दोहरा। जब आए इस प्रभु को पयो, जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए, कब बाच दोहरा। ठाड पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत मैं, जब तुम करो हो सहाय दोहरा। जे जे तुम्हरे ध्यान को नित उठ त्या है संत, अंत लहेंगे मुक्त भल, पाव हैंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मोह, कोटक बिस्न महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रब सस क्रोर जलेश दोहरा। राम

अमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखाने हो। दोहरा

द्वार, सगल द्वार को छाड़ के गहेओ तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया। सब दोता गाव हरी केरा, मन जनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किच है जिसते सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन पुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया हिवड़िया। कह नानक सुनो हो संत हो शब्द त्रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत ददवास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर के लागे। कह नानक दैस गुहुआ तत्कर अनहद वाजे, अनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी, सुन ते पनीत कह ते पवित सतगुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाचे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा, थाल विच दिन वस्तु पियो सत संतोख विचारो, अमृत

प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सत्कार।

Welcome, विचार गावे को साज करी तन खेहे गावे को जी लै पर देहे गावे को जापै दिसा दूर गावे को विखै हादरा हदूर कथ ना कथी न आवै तोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लांदे थक पाहि जुगा जुगंतर काहि काहे हुक्मे हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब सच नाहि पाखे आपाहु पा रखै है मंगै है देह देह दात करी दातार फेर के अगै रखी है जे दिसा दरबार माहु के बोल बोली है जितन तर प्यार मृत बेड़ा सच ना उबड़िया विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक इवै जाड़ी है सब आपे सचे अर्थ आपिया ना जाय कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवे आतन पाया मान नान गावीए गुणी निदान गावीए सुड़िए मर रखिए भाव दुख पर सुकर ल जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रह असमाई गुर ईश्वर गुर गौर ब्रह्मा गौर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता उसो मैं विसरण जाई तीर्थ नावा जित भावा बिन पाणी के नाय करी जेती सिरट उपाय बेकाबल कर्मा के मिला लई मत विच रत्न जवाह माणक जी एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता उसो मैं विसरण जाई तीर्थ नावा जित भावा बिन पाणी के नाय करी जेती सिरट उपाय बेखाबल कर्मा के मिला लई मत विच रत्न जवाहर माणक जी एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता उसो मैं विसरण जाई जे जुगचारे आर जा होर दिसोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोय चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नद नयावी ता वतन पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरहि नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोय न सुजहि जे तिस गुण कोय करे सुड़िया सिद्ध पीर सुरड़ात सुड़िया तर तबले आकाश सुड़िया दीप लो पातालू सुड़िया पोहन सका कालू नानक भगता सदा पिगा सुड़िया दुख पाप का नास सुड़िया ईसर ब्रह्मा इंदो सुड़िया मुक्साला हनुमान सुड़िया जुग जुगतन भेद सुड़िया सासत सिमरत वेद नानक भगत सदब गास सुड़िया दुख पाप का नास सुड़िया सतसंतो ग्यार सुड़िया अड़सठ काश नार सुनया बड़ बड़ पाव मान सुनया लागे सह ध्यान नानक भगत सदब गास सुड़िया दुख पाप का नास सुड़िया सरा गुणा की गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावे राह सुनया हाथ वस गाहु नानक भगत सदब गास सुड़िया दुख पाप का नास मने की गात कही ना जाय जी को कह पिछा पछताए कागद कलम न लिखण हार मने का वह करण विचार ऐसा नाओ निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए मन्ना सुरत होए मन बदौ मन्ना सगल भवन की सुद मन्ना मोह चोटा ना खाए मन्ना जम का साथ न जाए ऐसा नाओ निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए मन्ना मार्ग ठाग न पाए मन्ना पथ प्रगट जाए मन्ना भगन चलै पंथ मन्ना धर्म से तीसन बंद ऐसा नाओ निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए मन्ना पावे मुख द्वार मन्ना परवार साध हर मन्ना तरह तारे गुरु सिख मन्ना नानक पावे है ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जी कुमन जाने मन कोई पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दुर्गह मान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जी को कह करा विचार करते का करना नाहि समारू धौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जे को बुझा हो अस्ते आल तबला उपर किता भार धरती होर प्रै होर तिस्ते भार तला कमजोर जी जात रंगा के नाप सुना लिखे बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोई लेखा लिखिया किता हुए किता तान सवाले हो रूप कीती दात जाना कौन को तो किता फसावे को कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावे साई भलीकार तुसदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख भाव संख पूजा संख तपताओ संख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख योग मरण राह दासंख भगत गुण ज्ञान विचारु असंख सती असंख दातार असंख सूरमह बक्सार संख मौन लिबलाय तार
ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੁਸ ਦਾ ਸਲਾਮ।

सिमरत सासर पुन पाप विचार दे ततः सारण जानी ततः सारण जानी गुरु बाजोहत ततः सारण जानी तेहे गुणे संसार भ्रम सत्ता सुत्यारण महानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन मस्या बोल है अमृत बाणी कह नानक सो तत् पा जिसनु अन दिन हर लागे जागत रहन बिहानी माता के उदन मह प्रतपाल करे सो के मनोह मसारी है मनोह कह मसारी ए बड़ दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे उसनु के हो पहे ना सके जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए बड़ दाता सो के मनोह मसारी है जैसी अग्न उदर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करता खेल रचाया जाऊं तिस भाणा तन जमयां परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मह उपजै पहु दूजा लाया कह नानक गुर प्रसाद दी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया अरे आप मुल्क है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै बटहु रहे लोक विल लाए ऐसा सत गुर जी मिलाए तिसनु सुर सौंपिए विचों आप जाए जिस दा जीओ तिस मिल रह हर विसै मन आए अरे आप मुल्क है भगत न के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रस मेरी मन मन जारा हर रस मेरी मन मन जारा सतगुर तेरा जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खठे दिहाड़ी

कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सोना कुड़ रूपा कुड़ पहनहार

0: चले सग मारिए।
1: पड़े हुए गुनेगार तुम नौमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वेहो ना पचारी है। ऐसी कला ना खेडी है, जिधर के गया हारी है। पड़िया त्यों मिया विचार के विचारी है, मुचले स्वर्ग मारी है, मुचले स्वर्ग

दरगह अंदर पाई है तगना टूट सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवनित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जिहवा तगना अखी वे तगा पे बत्ते वट धागे अवरै कत्ते।

नील वस्त्र पहरवे प्रमाण मले स्थाले पूज है पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे यह अन्न साडा फिटे

0: घरपला तेरे कार्य आनंद बधाई तुद कार मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला पर भूर दिस जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता
1: तनु पवन गुरु पानी पिता माता तत महत दिस रात दुदाई दाया खेला सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वच धर्म दूर करमिया